आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा

0: और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नीट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसरशिप या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाजी वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital. The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion. In each case, a taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and proportionate penalty.

ဧတိုင်မုနမန္တနင်းကာနေတီကုံဒုန်နီယောအရောဝေဘေရမွန်ဘကာသလစမီယာသလစမီယာဒွိတရခွန်တွာဘီတာအရောဂါမာတောဂေစကာခုပ်စီရီယပ်ဘကမုန်င်းဘကနမနာအရောဂေစကာဒုံဇောအလာမလာဆန်တောဝေအလာမလာဆာဇီယာသလစမီယာဒွာဝေဇဂိုင်းနင်းအတာရေငါလေယာအရောပင်ကကနင်းअपना अकुसा सावधान का टोंगना लगना वनी बिसे अकुसा डिप्रे हाउना लमतो बेसिस क्रनिंग डॉक्टर ने परामर्श ला एमंग चेकअप की टोंगना लगना आरो सनी कने ने पिराई मुक्रो हाउना लगना आरो सनी कने ने मुक्रो हाउने ने थलासेमिया बेराम ने सनीया डोंजो जिंका बीट रोड गाजर सिलेरी अल्फा अल्फा स्प्राउट्स सलगुम सोक्सरा रसुन लेटोस टमाटो पेटिंग सालो आलू एप्पल्स आरो क्रैनबेरीज दालिम स्ट्रॉबेरीज अनारस लेबू आरो अचाई बेरीज बकिमबाका आरो पागान रकम सानी थायरों टोंटो जेरों थालासेमिया बेरामने बादे पेलेम सानी बकिमों परीक्षा रेकिमों गवेषकों ए जिनिसना बाक्टो आरो ए जिनिसना नेंग जुदि प्रत्येक दिनानि निनि सानि ककनिये नेंग साइतवा उनका बना निनि उटापना अकोइ सानि हाजाने दोंना मानाबा ठीक ठाक क दोंना माना बेसि रखम जिया थालासेमिया द्वा ओ डॉक्टर नि परामर्श लायमु जे ओन्ना जे बिब्लाबा सानाबा छय मास परे दुइ मास परे थि बदलायना लागिया ए जिनिसना নিং মুক্তিতোয়া বা মুক্তনামানা তে বেশি রকমে নিং ডক্টর নে পরামর্শ লা এমং টংনা লাগিনা তে জিয়ানি নে আকুইসা কম ওই অকটে নিং বা অনেখনে থি কম দুনিয়ে এই জিনিস না সাই টংনা লাগিয়া আপারং মাঠে না মঞ্জ কান্দাম নে পেলেম নে বাদে এই থালাসমে পাকজো বানাং আটারে না লাগিয়া কানে ঠিক কম দুনিয়ানি বাদে নানা রকম সমস্যা রংনা নিং বং না মানা যাতে এই কয়টা জিনিস না নিং সাবধান কা সাইমুং কাকিমুং চলাই না মানা অনুষ্ঠানে নাথিম না মানা তাই আরো গেছে চাই রঙ্গম স্বপ্ন কুজনী সুখনে আরো সুরাহনে চাই হাদাওয়াইনি পার চায় নাথেম

0: सपना कुजनी सुमसुकनी होरांगे नाथमना मानजा पारों हादाव आइनी पार आरो एसाय सायनि गरगेनि नापारोंनि जासिंनि कसर नस्थाननि अकटा फुरायजोग सुपनिन पेलेंटोनि कामना रेक्टो आरो फुइनि गानेकिनि महालयायना आपारोंना सुबिस्सा हौतो जाते एइ बसरनि सारदीय उत्सवा सुपनि जनेन रेंगी खुशी आरो शान्ति ठाइ फैहन यान निनि सारदा उत्सवनि बा मा दुर्गाजनि जाथोंए प्रार्थना स्वप्नान कांचिकन नमस्कार
1: Nasima coach composite program ko watani sumayo coach ko sikchi tare pa den tan den tan program ma ko khna suan baksa gi chang ko khna suna manaha ari program na don so man sumay ba yanon bonaha ba o tik tik sani jak mano sni ba jong ahon deli station ni ko watats ka pa hindi ko bol ko khna suan baksa sni ba ji minute bo ha english ko bol ko khna suna man gen yan akashwani tura

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र के जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में यह दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के अनुमोदित कर सुधारों के नए द्वार का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की कि इससे दवा

0: की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। इससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल किए जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिले हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए। सबसे अधिक 7,16,00,000 रुपए कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्त हुए। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के उनके फार्म हाउस नानाजी वाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर नए मिसाइल हमले करने का दावा किया। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी। इस बीच रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटों सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. The two-day departmental summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer center-state collaboration. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold of prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital. The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and proportionate penalty. Prime Minister Narendra Modi has welcomed the new round of GST reforms approved by the GST Council yesterday

नसीमा नाम गुम जाएगा फनी कभी ये ना पूछना गीत खोखना स्वाहा ताऊ जोल जोल नसीमा कमंडो फिल्मोनी राहत फतेह अली खान निर गप्पा सावन बेरी गीत खोख नास्कागेन।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: नसीमांग जानशीन फिल्मोनी प्यार होने लगा है गीत को खना सोना मना हा दारू नसीमांग ना मस्ती जादी फिल्मोनी मिट ब्रदर्स अंजान आरो बेनीदा नी गपा कमीना है देव गीत को का मतंग स्काइंगा

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए। भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन के इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
2: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। यह इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष में बताते हैं,
3: दूर दूराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पुलिस सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, है सौर विद्युत गाँव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गाँव के महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
2: ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रहे हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँव में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गाँवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गाँवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़ खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल है। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग दालिम लोशन
5: तो शुरू कर।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30 प्रतिशत

0: रहेगी। एक रिपोर्ट।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं की MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में है। TDK के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
2: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई है। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ाने अस्थायी रूप से रोक दी है। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, TCS, विप्रो और SCL के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री केथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच 7:00 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रचानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में

0: कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आए, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रूपये की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हुई चीख चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छीन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रूपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुति विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन वैलिडिक्टरी सेशन ऑफ डिपार्टमेंटल समिट ऑन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली टुडे। गवर्नमेंट कैप्स ट्रेड मार्जिन्स ऑन नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर ड्रग्स एट 40% ऑफ एमआरपी, प्राइसेस मे फॉल बाय अप टू 70%। काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड वेस्ट बंगाल एंड 1 लोकसभा सीट इन असम। लास्ट राइट्स ऑफ वेटरन एक्टर नाना पाटेकर परफॉर्म्ड विद फुल स्टेट ऑनर्स एट हिज पुणे फार्म हाउस। Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day departmental summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
2: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities and accelerate outcomes through closer center-state collaboration. The summit is focusing on 4 key themes including nutrition, early education, child protection, women's safety and empowerment. The departmental summit model is bringing together stakeholders from the union and state governments to deliberate on sectoral priorities, share good practices, address implementation challenges and agree on time-bound actions for improved governance and service delivery.

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: नसीमा आजाखा जारम बे सी एच मोमनी फोइदो मानी को खनासवा हा दा जो जो नसीमा ना वसिंग मारक ने गपा थासुंग तानी गिटा को गा मातांगेगा गिटा वेगा बादी तान स्लेंगेन छम बाइक सलना मतना आरो बोलखलोक ने मोइना

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन के इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों को का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय को उम्मीद है कि इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। इन सीटों पर मतदान मंगलवार को हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल विस्फोटक निष्क्रिय करते समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
2: सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के एलआर मडगू कैंप के पास भूतराज पदर नाले के करीब एम्युनिशन टेक्नीशियन टीम और सीआरपीएफ जवान बारूदी सुरंगों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश पास में आकर गिरकर फट गया। हादसे में 4 जवान घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायल जवानों को हैदराबाद रेफर किया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे के फार्म हाउस नानाजी वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने के आसार है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। देहरादून स्थित मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 4,200 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भारती देश की सुरीली धड़कन आज की फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

संगीत और रविंद्र जैन के घरों में रंग है भारतीयता का, वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हाँ।

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुई। उस दौर की ये मशहूर

Lebt weiter, Charlie.

रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ऊंचापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है।

मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भोंडे फूहर प्रयोगों में सस्ती तुकबंदियों में पढ़ाते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे भावपूर्ण अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार गीत।

के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत रोचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम है अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और

राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं, नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन मूवी जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।

टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन। रविंद्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविंद्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविंद्र जैन सदैव याद किए जाएंगे अपने मधुर संगीत के लिए, मीठे गीतों के लिए।

0: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा।

हमारे जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश के सुनहरी धरती पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विभाग से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन के इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधान हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजनगर, तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल विस्फोटक निष्क्रिय करते समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
2: सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के एलआर मडगू कैंप के पास भूतराज पदर नाले के करीब एम्युनिशन टेक्नीशियन टीम और सीआरपीएफ जवान बारूदी सुरंगों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश पास में आकर गिरकर फट गया। हादसे में 4 जवान घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायल जवानों को हैदराबाद रेफर किया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरल में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैच की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जानकारी के लिए सभी इंग्लिश सर्विसेज विजिट कीजिए डाउनलोड सर्विस आरती ऐप। सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या फिर स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
0: आपका साइबर रक्षक।

0: 800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो व्हाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक व्हाई आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा पूछो WHY, व्हाई कहता है कैप्टन व्हाई ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

0: नमस्कार रितु।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: प्रियम कसुम सोना मार्ग से लतीफ अहमदरीना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए।
1: यहाँ है तो मौसम लगे बहुत गर्मी है, दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी रहती है, स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, नॉर्मल तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतनी गर्मी।
0: दिन की गर्मी परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: वो होता है तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है सितंबर के महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में रहते हैं
1: नहीं, बाकी बाकी काम कर लेते हैं ना, जैसे अखरोट का वो गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट में पैकिंग करते हैं, ऐसा ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं अखरोट की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं अखरोट पाते हैं, उसमें तो दो खाट गिरी निकालते हैं, वही निकालते हैं, फिर दबा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं।
0: अरे?
1: पत्थर पे तो, हाँ।
0: अच्छा, कितने अखरोट को तोड़ लेते हैं?
1: बस ये लगभग 1 क्विंटल किसी को निकलता है, 1 क्विंटल किसी को निकल जाता है, 40-50 किलो ऐसा ऐसा रहता है।
0: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं हल्का हल्का, एक नट क्रैकर आता है, उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना? आप कह रहे हैं हाथ से करते हैं?
1: हाँ, हाथ से तो हल्का हो, उसको उतना ये नहीं होता है छिलका, तो पत्थर पे रखते हैं, फिर तो हथेली से दम मारते हैं तो टूट जाता है, फिर उसमें गिरी निकलता है।
0: तो गिरी चूड़ा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना?
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है,
0: बहुत मुश्किल काम है ये भी।
1: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
0: चलिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
1: बहुत मुश्किल, मेहनत तो अभी ही है, रोजगार
0: बिल्कुल आपने समय निकाल कर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
1: सही बात, सही बात, मैं दिल से सुनता हूँ, पिता ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ, सारे प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम आते हैं और मैं सुनता रहता हूँ, आज की फनकार में सुनता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब। गाना बताइए जो हम आपको सुनवाएं आपकी पसंद का।
1: उनका नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में है वो, एक जहां की तुम्हारी आंखें।
0: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, मिलके सुनते हैं।

0: कर रही हूँ। नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: ये मुख्य नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जी बोल रहे हैं।
0: क्या करते हैं मुकेश जी?
1: टू व्हीलर गाड़ी जो
0: है
1: उनके काम है।
0: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में, मोटर बाइक के
1: डिजाइन वाले बना देते हैं और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
0: प्लेन पसंद करते हैं? अच्छा, कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका?
1: लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं, पानी वाले नहीं बनते हैं। लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
0: ज्यादा कौन से प्रचलन में है? पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे, यार ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते थे। जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपनी स्कूटी या मोटरबाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि केवल पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
1: अभी तो एक वेट वाला कवर आ रहा है, जाली वाला, वो लगाते गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में।
0: हाँ,
1: उसका

0: फिर कमर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दोपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के, तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर? तो फोर व्हीलर के जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते हैं या?
1: सीटें बढ़िया होती है, गाड़ी खड़े रखने की भी जगह होनी चाहिए, हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी टू व्हीलर आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ी तीन गाड़ी और चार गाड़ी खड़ी रह जाती है आराम से, जगह की भी स्पेस चाहिए ज्यादा बड़ी गाड़ियों के लिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए आप तो उदयपुर में रहते हैं झीलों की नगरी में, कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: डुबरू डुबरा गाना है राजपूत का।
0: कौन सा?
1: राजस्थान में फिल्म आया जादू का मामला।
0: अरे वाह, ये उदयपुर में फिल्माया था।
1: डुबरू डुबरा राजस्थान में किशोर कुमार।
0: चलिए सुनते हैं।

0: शुभकामना एक साथ दीदी कहाँ रखेंगे हम?
1: क्या बोलते कि खुशी में रखिएगा।

0: जी, बिल्कुल, आपको भी खूबी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रभान जी?
1: मैं सिस्टम को फील्ड में नौकरी करता हूँ मैडम। मैं अपने फील्ड में कई खेलों में फोन करता हूँ, लाइव फोन करके मैं जुड़ता हूँ, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूँ, ईमेल में जुड़ता हूँ, बड़ा मोबाइल में बात करता हूँ, छोटे मोबाइल में प्रसारण सुनता हूँ, सभी चैनल का सुनते रहता हूँ। बहुत चैनल का मैं प्रसारण आया मैडम, और आपको चैनल में रहकर बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिशा मूर्ति मनोहर के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है शरण तेरी कसम, और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो, और गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक है।
0: तो आप सुनिएगा, अपनी पसंद करिए।

0: नमस्ते
1: साहिल नगर से बात कर रहा हूँ, मच्छिंद्र हरदास चांडव में। टीपू जो गाना देने का राजाराम चित्रपट का, तो पहले पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माता जी, उसके बाद पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद शिक्षक होते हैं, शिक्षक के बाद जो अपने को हाथ धकने वाला जो गुरु मिलता है उसको हम बोलते हैं, जो अपने हाथ पे जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मिलता जिंदगी में, तो वो सो रहती है माँ, सब सुख दुख झेल के सब काम करके अपने को छोटे से बड़ा करती है। तो आप सबका कर ज्यादा कर सकते, माँ का दुख का कर जिंदगी में कभी बढ़ा नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हूँ।
1: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए ने, वो हमारे माता जी पिताजी को कभी नहीं भूले।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
1: अभी मेरा वीर भारती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ 50 साल
0: ऐसी,
1: स्कूल में चौथी में से था तब तो आज तक लेके हम वीर भारती बचपन से सुन के बड़े होते आए ले। और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते है एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी टीपू जो गाना देने का राजाराम चित्रपट का,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे सुनते हैं आपकी पसंदीदा गीत।

0: पहले फरमाइश करनी चाहिए विवेक भारती से।
1: मंडा जी दीदी, सबसे पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश सरकार वाले ने प्यार भरा नमस्कार।
0: किसका?
1: अभिषेक सिंह बोल रहा हूँ मैम। सबसे पहले तो दीदी मैं सभी विवेक भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
0: चलिए अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बताइए क्या आपने स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे से 4 बजे
1: शानदार, बहुत ही शानदार प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छा लगा, दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा। तो दिन भर चालू करके लगा

0: जब वो लाइव हो
1: जी मेरे बहुत अच्छे प्रोग्राम दे
0: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे क्योंकि उन्हीं की है विवेक भारती। बताइए अभिषेक जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आरण भक्ति जी के बोल है और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
0: आइए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को उसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर है 0222876028800224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वंगुलेकर का, विवेक भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की रेजीनगर में भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि तमिलनाडु की मदुरांतकम सीट पर टीवीके और दारापुरम पर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। असम की लोकसभा सीट नगांव पर हुए उपचुनाव की मतगणना में भाजपा उम्मीदवार आगे है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर गिनती के दूसरे दौर के बाद ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनयम से 4,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर के आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अबीब जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। श्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: आपके 4,800 reward points आज expired हो रहे हैं, अभी redeem करें।
1: अरे वाह, मिले इतने points कैसे? बस यही पूछो why reward points के नाम पर आए किसी unknown link पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक why आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा पूछो WHY, why कहता है कैप्टन Y of SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
2: तो शुरू करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ए विनायगुण को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और विजयनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में केवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम के नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन के इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और धारापुरम उपचुनाव में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में EGAR, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन शानमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के समृद्धि सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरल, माही, दक्षिण आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो वाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
4: हमेशा पूछो।

वो तो देखिए, अगर घर में हमारे आपके माता पिता या दादा दादी है तो उनके लिए सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी रखना बहुत काम की बात है। लेकिन अक्सर सवाल होता है कि कौन सी योजना हमारे काम की है और इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी। इसी काम को आसान बनाने के लिए 2026 में सरकार ने जीवन ऐप शुरू किया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी सरकारी योजनाओं, सुविधाओं, मदद और जरूरी सेवाओं की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। और अगर कभी किसी बुजुर्ग को मदद या सही जानकारी की जरूरत पड़े तो 1457 एल्डर लाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो घर के युवा साथियों, एक छोटा सा काम आपको जरूर करना है, वो ये कि भाई अपने माता पिता या दादा दादी को इस ऐप और हेल्पलाइन के बारे में बताइए, क्योंकि सरकारी सुविधा तभी सच में काम की बनती है जब उसकी जानकारी सही व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। और याद रखिए, सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल ही हमारी जिम्मेदारी नहीं, उनके सम्मान और सुरक्षित भविष्य में भी हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो हमारे ऊपर

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। और देखिए, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, उन्होंने कहा है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और ये पत्थर किसी भी उम्र में उछाला जा सकता है। तो आइए आज आपको एक ऐसी ही प्रेरक कहानी सुनाती

तमिलनाडु की एक गिरजा उम्मा की, जिनकी सराहना स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में की। गिरजा अम्मा जी वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और करीब 15 स्कूलों से जुड़े हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को देश के सैनिकों के लिए प्रतिदिन 1 रुपया योगदान देने के लिए प्रेरित किया। एक साल में प्रत्येक बच्चे से ₹365 जमा हुए और हजारों बच्चों के छोटे छोटे योगदान से लगभग 40 लाख की राशि इकट्ठा हुई। गिरजा अम्मा जी ने ये पूरी राशि सैनिकों के लिए प्रधानमंत्री को चेक के रूप में सौंप दी। प्रधानमंत्री जी ने उनके समर्पण को बहुत ही सराहा और साथ ही राष्ट्र निर्माण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के रूप में रेखांकित किया और कहा कि उनका देशभक्त का जो ये भाव है हर भारतीय को प्रेरित करता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर सोच में देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और देखिए ना, किसी ने एक ये भी बात कही है कि भाई मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। इसलिए प्रयास करते रहिए, क्या पता आपको क्या मिल जाए। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत संगीत हिमालय की गोद में फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने।

बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भाई मन हमारा खिल जाता है जब हमारे मन की चीजें होती हैं। और देखिए, आप घर आंगन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं मेरे साथ घर आंगन, और मैं हूँ आपकी दीदी सखी कल्पना। और आज का कार्यक्रम श्रोताओं बुजुर्गों को समर्पित है, तो आइए एक कविता अपने बुजुर्गों के लिए सुनाती हूँ कि थक गए हैं पांव तो क्या, हौसले अभी जवान है।

घर के हर एक कोने में आपके ही निशान हैं। आपने उंगली थाम के चलना हमें सिखाया था। वो दिन भी याद है जब गिरने पर उठाया था। आप घर की छांव हैं, आपसे ये घर घर लगता है। आप रहे तो उम्र का हर मौसम थोड़ा और सुंदर लगता है। बस इतना सा साथ हमारा, आप कभी अकेले ना हो। आपकी आंखों की हर नमी में हम आपके अपनों के मेले हों। तो भाई अपने बुजुर्गों को भी हमेशा ये एहसास दिलाते रहिए दोस्तों कि आप उनके साथ हैं, और कभी उनका हाथ में हाथ पकड़ के बैठ कर उनसे दो बातें कीजिए, उनके मन की भी जानिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ये कविता भी उन्हें सुना सकते हैं।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत यारना फिल्म से आप अभी सुन रहे थे आवाज किशोर कुमार की। और आइए आज रसोई में कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे बुजुर्गों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, थोड़ा हटकर है लेकिन बनाने में बिल्कुल आसान है। मखाना मूंग दाल का नरम उपमा। इसके लिए आपको चाहिए एक छोटी कटोरी मूंग दाल, एक कटोरी मखाना, थोड़ा सा अदरक, जीरा चाहिए, बारीक कटी हुई गाजर या दूसरी जो भी सब्जी आपको पसंद हो वो चाहिए, और थोड़ा सा तेल या घी चाहिए, नमक और पानी भी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि भाई मूंग दाल को 15-20 मिनट भिगो लें, मखानों को हल्का भून कर

जरा पीस ले। अब कढ़ाई में थोड़ा तेल या घी डालकर जीरा और अदरक भूने, फिर सब्जियां डालकर हल्का पकाएं। इसमें भीगी हुई मूंग दाल और पिसे हुए जो मखाने हैं वो डाल दें। पानी डालकर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक उपमा नरम न हो जाए। मूंग दाल से प्रोटीन और मखाने से प्रोटीन के साथ कई पोषक तत्व मिलते हैं। सब्जियां जो होती हैं इसमें, उनमें फाइबर और दूसरे पोषक तत्व भी रहते हैं। और होता क्या है कि भाई नरम होने के कारण इसे चबाना भी आसान रहता है, तो बुजुर्गों के लिए खाने की भी दिक्कत नहीं होती, वो इसे इजिली खा सकते हैं। साथ ही इसमें नमक मसाला और तेल जो है वो हल्का ही रहता है, तो इस लिहाज से भी वो उनके लिए अच्छा है। तो इस बार आपको करने के लिए कि भाई नाश्ते में कुछ नया आजमाइए, और जो मैंने अभी आपको बताया है मखाना मूंग दाल का नरम उपमा, इस बार वो भी बनाकर अपने बुजुर्गों को खिलाइए और फिर देखिए स्वाद भी बदलेगा और नाश्ते में पौष्टिकता भी जुड़ेगी। तो इतनी अच्छी जानकारी के बाद अब आपको एक प्यारा सा गीत भी सुना देती हूँ। तो आइए ये गीत सुनते हैं एक फूल दो माली फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

श्रोताओं, देखिए, हम किताबों की तरह हैं। अधिकांश लोग सिर्फ हमारा कवर देखते हैं, कुछ लोग भूमिका पढ़ते हैं, बहुत लोग आलोचकों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम ये जान पाते हैं कि हमारे भीतर आखिर है क्या। और देखिए, इन्हीं भावों पर किसी ने कही है ये पंक्तियां कि आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है तेरा चाहने वाला, मैं मोह हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज कार्यक्रम का यह अंतिम गीत फागुन फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आपको सुनवाती हूँ। और इस गीत को सुनिए और मुझे यानी अपने रेडियो से की कल्पना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से

वाले और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है। 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुए हैं। जो हमारे लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें करना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और विजयनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के मदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ TDK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम के नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूर संचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़ें, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11 और 5 सेकंड्स। मैं आपका रेडियो हम सफर राम प्रकाश लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी पन्नों पर उतारा जाएगा, उसमें एक ऐसे फनकार का जिक्र सुनहरे अक्षरों में होगा जिसने सिल्वर स्क्रीन पर अपनी कविताओं को उकेरा। एक ऐसा फिल्मकार जिसकी कैमरे की नजर इतनी गहरी थी कि वो इंसान की रूह के भीतर झांक लेती थी, जिसने अपनी फिल्मों में रोशनी और परछाइयों का ऐसा खेल रचा जो आज भी फिल्म संस्थानों में पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक गुरुदत्त साहब के बारे में। गुरुदत्त महज एक फिल्म मेकर नहीं थे, वो सेलुलॉइड के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने फिल्मों का हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह मुकम्मल करके रखा था। उनकी फिल्मों में इसकी खूबसूरती बखूबी नजर आती थी। उनकी फिल्मों की सादगी, गहरा फलसफा और किरदारों की कश्मकश दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर जाती थी। तो वहीं आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं उनकी ही एक ऐसी ही काजल फिल्म के एक बेहद ही प्यारे गीत के साथ।

गुरुदत्त साहब का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के एक पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बचपन से ही कला और संस्कृति के प्रति उनका रुझान बहुत गहरा था। उनके इसी कलात्मक झुकाव को देखते हुए उन्हें मशहूर नर्तक उदय शंकर की अल्मोड़ा स्थित डांस एकेडमी में नृत्य सीखने भेजा गया। शायद यही वजह थी कि उनकी फिल्मों के दृश्यों में एक अनोखी लय और ताल नजर आती थी। करियर की शुरुआत में उन्होंने प्रभात कंपनी पुणे में एक कोरियोग्राफर और सहायक निर्देशक के रूप में काम शुरू किया, जहां उनके अभिनय और निर्देशन की नींव बेहद मजबूत हुई।

दोस्तों के बाद फिल्म कंपनी में काम करने के दौरान ही गुरुदत्त की मुलाकात सदाबहार अभिनेता देवानंद से हुई। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और उन्होंने एक वादा किया कि देवानंद अगर फिल्म बनाएंगे तो गुरुदत्त उसका निर्देशन करेंगे। और इसी वादे के तहत देवानंद ने अपनी कंपनी नवकेतन की फिल्म बाजी का निर्देशन गुरुदत्त को सौंपा। यह फिल्म उनके करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बात करें गुरुदत्त की अनूठी शैली की तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी 100 मिलीमीटर लेंस का इस्तेमाल करके क्लोजअप शॉट्स लेना, जिससे किरदार की आंखों की हर भावना पर्दे पर जीवंत हो उठती थी। उनकी फिल्मों का प्रकाश और छाया यानी लाइट एंड शेड का कॉम्बिनेशन आज भी पूरी दुनिया के लिए मास्टर क्लास है।

0: 200 ट्राइटन कलाकार बेमिसाल में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

0: है इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी सारथी ऐप। मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार बाजरा रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है जिनका उपयोग रोटी दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, गुरुदत्त साहब की एक और बड़ी खासियत थी उनकी पारखी नजर। उन्होंने अपने सिनेमाई सफर में दिग्गजों की एक पूरी टीम तैयार की। कैमरामैन वी के मूर्ति के साथ उनकी जुगलबंदी ने सिनेमा को वो दृश्य दिए जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। लेखक अब्रार अलवी, गीतकार साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, संगीतकार एसडी बर्मन और ओपी नायर के साथ मिलकर उन्होंने एक से बढ़कर एक जादुई कृतियां रची। इसके अलावा कॉमेडियन जॉनी वॉकर के लिए उनकी फिल्मों में हमेशा एक खास जगह होती थी। दोस्तों, गुरुदेव की फिल्मों में गीता दत्त की मखमली आवाज और वाहिदा रहमान का खूबसूरत अभिनय भारतीय सिनेमा की सबसे सुनहरी यादों में गिना जाता है।

बात करें गुरुदत्त के अभिनय और निर्देशन से सजी कुछ बेहतरीन और यादगार फिल्मों की, तो उन्होंने हिंदी सिनेमा को फिल्मों के रूप में ऐसे तोहफे दिए जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। फिल्म पैसा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद, मिस्टर एंड मिसेस 55, आर पार और बाजी, ये महज फिल्म नहीं है बल्कि सिनेमा की टेक्स्ट बुक है। गुरुदत्त साहब अपनी फिल्मों के हर पहलू को खुद तराशते थे, फिर चाहे वो गानों का फिल्मांकन हो या डायलॉग्स की अदायगी, हर जगह उनका परफेक्शनिस्ट अंदाज साफ झलकता था।

200 गुरुदत्त साहब के बेमिसाल काम ने उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाए। उनके द्वारा निर्मित फिल्म साहिब बीबी और गुलाम ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। उनकी फिल्म प्यासा और कागज के फूल को दुनिया भर के फिल्म समारोहों में आज भी महानतम फिल्मों की सूची में रखा जाता है। यहाँ तक कि फेमस टाइम मैगजीन ने फिल्म प्यासा को दुनिया की 100 सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल किया। भारत सरकार ने सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को सराहते हुए उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था।

0: दोस्तों, कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नेहा, तुम इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
4: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है।
3: मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
4: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
3: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है, तीन अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
4: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
3: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपने नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप। रातों को नींद ना आना, कच्ची नींद लगना, नींद का बार बार टूट जाना, ये लक्षण हो सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के। ये एक मनोरोग भी हो सकता है। समय ना गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज, ईबास और स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा जारी।

वो दूध सहयोग की कला समय से बहुत आगे की थी। उन्होंने भारतीय सिनेमा को जो गहराई और जो दार्शनिक दृष्टिकोण दिया, वो आज की युवा पीढ़ी के फिल्मकारों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज का हर बड़ा निर्देशक उनके काम को अपना गुरु मानता है। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही गुरुदत्त साहब का सिनेमाई सफर छोटा रहा हो, लेकिन अपनी कला के जरिए वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, गुरुदत्त साहब की विरासत हमें यही सिखाती है कि सच्ची कला कभी मरती नहीं, वो पीढ़ियों तक दिलों में धड़कती रहती है।

इसी गीत के साथ आज का कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी दुल्हन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सिर्फ नियुक्ति पत्र ही संभाल के मैंने रखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है निदा फाजली का शेर, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है। एक श्रोता की टिप्पणी ये लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत बढ़िया लग रहा है, खतों की बात है, मुझे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं और गानों की लिस्ट इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का प्रोग्राम खास है क्योंकि बहुत सारी यादें ताजा हो रही है। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हम मेरे घर आ रहे हैं, चिट्ठी डाकिया डाक लाया, एक डाक और डाकिया एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को देखकर चेहरे पर चमक आ जाती थी। और मेरे घर आ रही चिट्ठी आए या ना आए, लेकिन हमें इंतजार रहता था, डाक वाले का पूरा शहर सम्मान करता था। अब वो जमाना गुजरे जमाने में सालों में तब्दील हो गया, दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड, शादी के निमंत्रण, कुशलता का समाचार, कोई अन्य खबर, नौकरी से संबंधित सूचनाओं के पत्र भी, और भी बातें, बहुत कुछ यादें ताजा हो गई जब लोग चिट्ठी लिखने को कहते और आई चिट्ठी को पढ़कर सुनाया करते थे। तो ऐसी तमाम चिट्ठियां होती थी जब, और ये भी आपको याद होगा कि अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जब, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जिन्हें पत्र पढ़ने नहीं आता था, वो पत्र लेकर आती थी घर में और कहती थी कि जरा ये पत्र पढ़कर सुना दो। और इसमें कई बार मजाक भी होता था, बच्चे शरारत भी करते थे, चिट्ठी लेकर भागते थे इधर उधर, वो दादी काकी दौड़ती थी पीछे पीछे, वो भी एक अलग आनंद था। एक श्रोता ने लिखा है कि क्या वो खूबसूरत दौर था जब किसी अपने के नाम चिट्ठी लिखना अपने मन के आंगन में उतरने जैसा हुआ करता था, कलम की नोक से कागज पर उतरते शब्दों में न जाने कितनी भावनाएं गुल जाया करती थी। शब्द केवल पढ़े नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। आज तो डिजिटल युग में उंगलियों के एक स्पर्श से संदेश पहुंच जाते हैं, परख झपकते ही जवाब आ जाते हैं, लेकिन वो चिट्ठी वाली स्पर्श कहाँ मिलती है। चलिए अब सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम, और गीतकार और संगीतकार का नाम भी पूछिए।

हिना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था नक्शलाल पुरी और संगीतकार रविंद्र जैन, और आज उनकी याद का दिन है रविंद्र जैन साहब का, तो आज का ये प्रोग्राम का आखिरी गाना उन्हीं के नाम था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है और अभी भी टिप्पणियां आ ही रही हैं श्रोताओं की, पढ़ देते हैं, थोड़ा सा वक्त है। चिट्ठी लाने वाले डाकियों को हर बड़े त्योहार जैसे होली दिवाली पर विशेष उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने आकाशवाणी जलगांव से प्राप्त ग्रीटिंग कार्ड कुछ दोस्तों के पत्र संभाल कर रखे हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने कुछ पुराने खत अभी रखे हैं संभाल कर, मेरी जेब में पड़ा मोबाइल बहुत जलता है इस बात से। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चिट्ठियों का इंतजार रहता था, अब जमाना बदल गया है, विश्व डाक सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक श्रोता ने लिखा है, गानों की लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु से होती थी शुरुआत पत्र की, और चिट्ठी महज कागज का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हृदय की धड़कनों और आपसी प्रेम का लिखित जीवंत दस्तावेज हुआ करता था, जो प्रेम प्रतीक्षा धीरज के रंगों से जोलबंदी करता हुआ एक भावुक और दिल से दिल को जोड़े रखने के एहसास लिए होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रियतम प्रियजनों से भी ज्यादा प्रतीक्षा डाकिये की होती थी, पोस्टकार्ड अंतरदेशीय लिफाफों में सिमटे, संवादों का आदान प्रदान ने डाकिये को प्रत्येक घर का सदस्य बना दिया था। गांव में माँ की सुनी आंखें, पत्नी की पलकों, पिता की आशा को, इंतजार को, खुशी और मायूसी दोनों डाकिये से ही होती थी। क्या बात है भाई, आप सब ने आज अपनी यादें खंगाली और ताजा की हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब प्रोग्राम का ये सुरीला सफर यही खत्म होता है। सुरीला सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवादक जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 49वीं कड़ी।

0: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह राष्ट्र मंत्र अपना सा लगा। क्रांतिकारियों से लेकर सत्याग्रहियों तक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर किसी में वंदे मातरम शब्द के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया। इससे यहाँ के कलाकार भी अछूते नहीं रहे। अवनींद्रनाथ ठाकुर, राव बहादुर धुरंधर, दीननाथ दलाल, रघुवीर मुर्गांवकर और अल्लाह बख्श जैसे अनेक चित्रकारों ने भारत माता के चित्र बनाकर वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।
1: जनता पार्टी

0: इस रेस के बीच दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुए हैं। जो हमारे लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होते हैं और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तिर्थ और मंडी हाउस भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेल स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेल स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेल स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में IIT जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज खुद फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन के इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सत्यन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपए से घटकर 8 रुपए से भी कम रह गई है।
2: भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख बिस्कुट वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़े सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और विजयनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है। तमिलनाडु के वजरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम के नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल है। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी के EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरीद नाज। सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1943 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूचित एच HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंच के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
3: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंग अनुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2000

0: 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का समृद्धि सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्री कर्नाटक और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इसलिए कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया अनार कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावली विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजा मेहदी अली खां का लिखा एक गाना। फिल्म थी वो कौन थी और संगीतकार थे मदन मोहन। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र। व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बने? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। तो पहले देखेंगे तो पहले का सबसे पहला अंग जो है प्लस वन। तो चार भी अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 100 साल की जिंदगी
1: में एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु है डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
0: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से होगा। उठेंगे तो ऊपर, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के ऊपर।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तेरा दिल ले गया, मोती मोती अखियों में आंसू ले गया। ओए कान पर देसी तेरा दिल ले गया, मोती मोती।

नंबर दे से तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया। ओए नंबर दे से तेरा दिल ले गया, मोटी

0: उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे तो की तो तुमसे मिला दो। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे तो की तो तुमसे मिला दो।
1: मेरे पास था वो सब ले गया,
0: कौन पर जैसे तेरा दिल मिल गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
1: किस पर जैसे मेरा दिल मिल गया, जब जब मीठा मीठा हम दे गया।
2: आप सुन रहे थे फागुन फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलालाबादी के बोल थे, ओपी नैय्यर का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: तुम्हें उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात करूँ, पर ऐसा फिल्म में मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसमें मैं मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जब पार्वती पार्वती पार्वती।
5: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक दो बात और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन राव के साथ।
6: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।

नागिन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रेम भवन का लिखा गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में। फिल्म थी सावन। वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव।
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर

हैं और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुनहरी धरतन विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में भूलते हैं संगीत, भूली बिसरे गीत, गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

I'm

बंगला फिल्म का गाना था महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल गांधी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये महुआ फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज।

महुआ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी के बोल थे सोनी कोवी का संगीत था। इसी के साथ आज का सदा बहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है और इसी के साथ अपने रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य होता है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें इन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारे लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाले और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के

0: बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरुण शणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल, वित्त, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं और राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाए गए रोक H-1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इसे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने केरलम, माही, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। लक्षद्वीप, बिहार, आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज दूसरा T20 क्रिकेट मैच रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. The Joint Commissioner said in view of this, the decision to deny permission was taken also considering the prevailing law and order situation, public safety and traffic regulations in the New Delhi area.
3: We have received an application from Sarun Das, co-convener of Congress Janata Party. The application is regarding an intimation for protest of 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
2: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to make

0: maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that the Delhi police would take appropriate legal action against anyone found violating the law. All mail and express trains departing from their source stations after 2 p.m. today and scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow will be cancelled at source. The Railways Ministry said the decision has been taken in view of the anticipated severe road traffic congestion in areas around both the railway stations tomorrow. Delhi Metro Rail Corporation has informed that 57 metro stations will be closed from 9 p.m. today till tomorrow due to security reasons in the National Capital Region. These stations include Rajiv Chowk, Lok Kalyan Marg, Central Secretariat, Janpath, Patel Chowk, New Delhi, Seva Teerth, Mandi House and Janpath. DMRC said interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi Metro Station. It said the closure of metro stations will remain in force till further notice. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of the Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day event, which began yesterday, is witnessing the participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer centre-state collaboration. Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia has said India's telecom and digital sectors have witnessed remarkable transformation over the past decade and have emerged on the global stage. Addressing a press conference at the India Mobile Congress in New Delhi, Mr. Scindia said India has also become the fifth country in the world to develop its own indigenous 4G stack. He said the cost of 1 gigabyte of data has declined from 268 rupees to less than 8 rupees. Mr. Scindia said India aims to double its 5G user base from 550 million to 1 billion by 2030. Counting of votes is underway for by-elections to four assembly seat constituencies in Tamil Nadu, West Bengal and one Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu assembly by-elections at Madurantakam and Dharapuram, the ruling TVK has taken the lead in both the constituencies. Meanwhile, counting of votes for the Thattanchavadi assembly constituency by-election in Puducherry has been completed. All India NR Congress candidate Ashok Anand has secured a comfortable victory with a margin of 8,482 votes in the seat vacated by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy. Ashok Anand secured 13,358 votes, while his nearest rival Indian National Congress candidate E. Vinayakam polled 4,876 votes. In cricket, India will take on West Indies in the second of the five-match T20 international series in Ranchi today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. And with that, we end this news bulletin.
1: Yan Akaswani Chura, Sumida Thamni Kimakabo, Sumida was her naked Thamba Ziminich Kung Aha, Yasumida Simon, Delhi Station Nikolaska, and Tantan program of Nasura Manaha. Aruya program Rangba Sanda, Saja Chinas in Studio Nitari Suman program Rangba Unaha, Jojo Nasimir Chasapa Richasapo in Sinigahacho, FMD program Rangko, Delhi Station Nikok Nanaman, Yan Akaswani Chura.
2: और कितने समय तक सुनती हैं ये बहुत अच्छी सी बात आपने बताई और आप अपनी पसंद के बारे में बताएंगे कुछ या आप क्या कहना चाहती हैं
3: मैं तो इतना कहूंगी कि आपका वो जितनी बड़ी कहानी है ना वो मुझे बहुत भाती है
2: जी बहुत अच्छा लगा आपने
3: अच्छा लगता है कि आप बीच बीच में जो बोल लेते हैं ना वो मेरे मन को इतना भाता है कि मैं आपको बता देने से मुझे आज इतना आनंद हुआ कि
2: देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग रही है और आपकी मेरे से बात भी हो रही है
3: और आपके लिए मुझे एक कहना है कि जब भी ऑन करोगे रेडियो तब कुछ भी नया ही पाओगे ऐसा विविध भारती का है और संगीत जो रहता है ना सबके दिलों की धड़कन विविध भारती वो बहुत अच्छा लगता है मुझे दिन भर रेडियो के सिवा मेरा कोई सका नहीं रहता इसलिए सखी भी वही है और पता भी मेरा रेडियो है
2: क्या बात है
3: मैं दिल से यही कहूंगी जब तक सूरज चांद रहे ना तब तक विविध भारती रेडियो हमेशा दिखता रहे
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतनी प्यारी सी बात करूँ। और बताइए, और क्या आपके शौक है या क्या आप करना पसंद करती हैं?
3: गेहूँ और माखने का बिस्किट बना के देती हूँ, घर में छोटा सा उद्योग खोल रखा है मैंने।
2: क्या बात है, मतलब घर के लिए बनाती है या आप बिजनेस भी करती हैं इसका? कुछ
3: बिजनेस भी करती हूँ मैं, दूसरों को बना के देती हूँ।
2: हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
3: जी खोल के आपके लिए धन्यवाद।
2: लेकिन ये बताइए कि आज आप हेलो सैली में कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
3: 16 बरस की बाली उम्र को सुना।
2: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम 16 साल में पहुंच गए, है ना? जी तो चलिए जयश्री जी, आपको आपकी

0: फिल्म सिटी में अंचल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, बिहार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या खास बात है?
1: शहर मेरा बहुत अच्छा है मैडम, साफ सफाई बिल्कुल रहती है वहाँ पे।
0: जी
1: वैसे मैं गांव से हूँ,
0: अच्छा,
1: जिला तो मेरे शहर है, गांव में रहते हैं मैडम। वैसे
0: गांव तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हरे भरे खेत होते हैं, है ना?
1: जी मैडम,
0: तो आपके यहाँ क्या होता है काम?
1: हमारे यहाँ पे मैडम फसल में धान वगैरह होते हैं मैडम, मरमा की कटाई होती है, गेहूँ
0: अच्छा, ज्यादा
1: भी होती है मैडम। जी
0: जी, दाल गेहूँ वगैरह होता है।
1: मैडम,
0: और सोनिका जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दादी बाबा या मम्मी पापा की यादों को ताजा करने वाले हैं। आपने जो वक्त गुजारा है लोगों के साथ में, तो कुछ उनकी यादें, किस्से, कहानियां, कुछ सीख

0: याद है तो आप हमें बताइए। ये बाबा बाबे तो मैडम मैंने देखे नहीं जी, ये बंदे अखबारों पे देखे जी, पापा भी अखबारों पे तो, मम्मी अभी फिलहाल तो मम्मी से आपने क्या क्या चीजें सीखी खाना बनाने में? रोटी होती है नरम जी के, नरम के आलू के परांठे, मेरी मम्मी दो तट्टे बनाती है नरम, उसी से मैंने सीखा नरम, मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो दो तट्टे बनाती हूँ नरम आलू के परांठे।
1: क्या बात है। और सरिता जी ये बताइए कि आपको भी ये कच्ची कढ़ाई कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती है क्या आप?
0: नहीं मैडम मैं ये नहीं करती, वैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम, हरियाणा में जैसे कोई तो टीम है एनआरएलएम की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं ना
1: जी सुनीता जी, जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं
0: मैडम। हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में अमेठी जिले में
1: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारी रेड भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
0: मैडम, सुबह से सुनती हूँ पति से हिंदी और पहले से हिंदी, तो मैडम कौन कार्यक्रम तो सुनती हूँ, और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना,
1: जी।
0: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ,
1: क्या
0: और
1: बात,
0: मैं कमेंट भी करती हूँ मैडम।
1: अच्छा बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करती हैं। और सुनीता जी, आपको
0: ये
1: कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
0: गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
1: तो आज जो आप मुझे गाना बताइए कि हेलो सहेली में आप ये गाना सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मजा आ जाएगा।
0: एक पत्थर बिन को मैं बिन दे बैठे, ये गीत सुना दीजिए।
1: आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का गाना सुनीता जी।

0: कहाँ से मिली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ मैम, मैं मरकत खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: जी, आपका क्या नाम है?
1: निंद्रा नोनार।
0: तो इंद्रा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम इंद्रा में पहले कथा तहसील में रहते हैं।
0: जी।

0: लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है
1: जी
0: और
1: आप।
0: हम खेती किसानी का काम करते हैं।
1: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत में क्या बोया है इस समय?
0: हमने खेत में धान बोया है ना।
1: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
0: हाँ मैम, कुछ मैंने आधी फसल बेचने के लिए रखी है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
1: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
0: परिवार में सास है, दो बेटे हैं और हम पति पत्नी दो जना।
1: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की, या आपके सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
0: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती के साथ उनका काम सीखे है।
1: जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने नहीं जाते, है ना?
0: हाँ मैम,
1: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
0: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, एक
1: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
0: फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
1: अच्छा, तो बताइए आप

0: हेलो सेविनी, आप कहाँ बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? प्रिया
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से। मैं
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सेविनी में। तो बताइए अपने बारे में कुछ। नहीं,
1: बस अपनी ऐसे ही प्राइवेट जॉब है,
0: अच्छा तो किस तरह की आप जॉब करती हैं?
1: कपड़ों की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना।
0: जी, यानी कि आप शॉप पे काम करती हैं, तो बहुत अच्छी
1: हाँ जी,
0: बात
1: हाँ जी, हाँ जी। वीरभारती के
0: जी।
1: सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे
0: एक
1: इतना पसंद है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
1: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही लोगों का रेडियो चलता ही रहता है।
0: क्या बात है। तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी?
1: पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड सब कुछ किया हुआ है
0: बीए और बीएड भी कर रखा है।
1: जी।
0: तो बीएड करने के बाद आपने नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
1: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए।
0: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रहे हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी
1: जी
0: बात
1: बिल्कुल।
0: है ना? बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है जिंदगी की सजा।

0: इंटरवल के बाद हम हाजिर हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं जयपुर से रहमाना बानो बोल रही हूँ।
0: रहमाना जी, आप जयपुर से बोल रही हैं, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे में, अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है आपका जयपुर शहर?
1: जयपुर बहुत अच्छा है मैडम, सब घूम घूम आते हैं यहाँ पे।
0: पिंक सिटी कहलाता है जयपुर।
1: तस्वीर बढ़िया है, आप भी आइए।
0: बिल्कुल, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा बस जयपुर घूमने आएंगे।
1: हाँ मैडम,
0: और बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस बच्चों को संभालना, घर का काम करना, हम पांच बहने एक भाई हैं।
0: जी, तो और आप क्या क्या करती हैं इसके अलावा? कुछ आप कढ़ाई वगैरह करती हूँ कुछ?
1: हाँ कढ़ाई भी करती हूँ, साड़ी भी करती हूँ, साड़ी पे सितारे लगाना
0: जी
1: और कड़े जो होते हैं कड़ों पे सितारे लगाना, कड़े पे होते हैं ना
0: जी जी जी
1: लाख के
0: कड़े होते हैं जो,
1: लाख के कड़े होते हैं जो, वो वाला काम करती हूँ।
0: मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कड़े होते हैं और उनमें आप मेहनत वगैरह लगाती हैं।
1: और मैडम सड़कों में ना बटन भी लगाते हैं हम,
0: जी जी
1: होती है ना तो पहनने की, और क्या कहते हैं कुर्ते होते हैं उसको बटन लगाते हैं, निशान लगाते हैं।
0: क्या बात है, तो एक दिन में कितनी कमीजों में आप बटन लगा सकती हैं?
1: तो मैंने 1000 फराकों में निशान लगाए तो मेरे
0: जी
1: 500 रुपए हो गए।
0: क्या बात है, और खाना वाना क्या बनाती हैं आप? अच्छा अच्छा
1: दीदी मैं इसको बनाती हूँ,
0: मीठे में क्या बनाती हैं?
1: मीठे में खीर,
0: अच्छा खीर, यानी किस चीज की खीर बनाती हैं आप?
1: की दूध की और इसमें चावल डालते हैं मैडम।
0: अच्छा चावल वाली खीर बनाती है, यानी कि जिसमें मेवा वगैरह डाल के बड़ा स्वाद हो जाता होगा उसमें तो।
1: आप उसमें चावल डाल लो।
0: हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्वाद आ गया यहाँ पर बैठे बैठे।
1: खिलाएंगे आपको पता की।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए रहमाना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, अपनी पसंद बताइए।
1: मैं किराने की फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
0: क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सर, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ना मेरे से बोल रही हूँ, मैं दुर्गा नाम है मेरा।
0: दुर्गा जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि और आप क्या करती हैं?
1: दोनों बच्चे जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं।
0: जी
1: मैं तो घर पे रहती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा, और साथ में रेडियो भी सुनती जाती हैं।
1: हाँ, रेडियो चलते रहे पर मेरा अभी बंद कर दिया हमने।
0: अच्छा, यानी कि आप हमसे बात कर रहे हैं इसलिए बंद किया है।
1: जी हाँ,
0: अच्छा, तो हमारे भारती के बहुत सारे प्रोग्राम जो आप सुनती हैं, उनमें से आपको कौन कौन से प्रोग्राम सबसे पसंद आते हैं?
1: पहले सहेलिया था वो सुनती हूँ मैं, रोज सबकी सहेलिया था वो भी सुनती हूँ,
0: जी
1: पंचायत जी का था वो शनिवार रविवार वो भी सुनती हूँ।
0: जी जी बहुत अच्छा
1: अभी
0: लगा।
1: सुबह 6 बजे चालू करती हूँ,
0: जी
1: तब मैं काम पे जाता हूँ तो रेडियो भी सुनती हूँ।
0: दुर्गा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद का फीलिंग का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: जी दुर्गा जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, और कॉल लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए
1: हाँ, मैं सिकंदरा से सुनीता लिखिए।
0: जी। सुनीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप?
1: मैं ग्रामीण दीदी।
0: सुनीता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी यादों को ताजा करना चाहते हैं, माता पिता के संग बिताई हुई, दादी बाबा के संग बिताई हुई, तो कुछ यादें हैं जो आप बता सकते हैं?
1: हाँ दीदी, बचपन में तो हम बहुत ये सब करते थे, मतलब ये खेलती थी, नहीं वो जैसे डिब्बे वाला खेलती थी ना,
0: जी,
1: कबड्डी, ये सब खेला करते थे। हाँ
0: जो सारे खेल होते हैं, लंगड़ी है या सिकड़ी है या रस्सी कूद है ना, इस टाइप के खेल।
1: रस्सी कूद, हाँ छिपन छिपाई, ये सब खेला करते थे। और अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी खेल खेलती हूँ, खेलती
0: जी
1: हूँ तो उनको कभी ज्यादा टीवी में देखना आप सीख जाओ, मैं आपको दूर की ऐसा
0: बिल्कुल,
1: नहीं।
0: अपने बच्चों के साथ आप उनको अपने समय में जो आप खेल खेला करती थी वो बच्चों को बताइए कि टीवी बंद करो, मोबाइल हटाओ और अब मेरे साथ आके तुम लोग भी खेलो खेल। तो उससे क्या होगा, एक आपस में जो संबंध बनता है प्यार का बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छा
1: हाँ
0: बनेगा।
1: दीदी,
0: और दोस्त जैसा अगर आप बन के रहेंगे, उनके साथ खेलेंगे, इंजॉय करेंगे, तो वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे, है ना?
1: हाँ दीदी दीदी, मैं मेरे को मोबाइल बहुत कम देखती हूँ, बच्चों बस
0: जी
1: ज्यादा खेलती कूदती हूँ।
0: सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है।
1: हाँ दीदी दीदी।

0: उनके साथ तो यार तो किसी मतलब कभी कभी बहुत बार खेल लेती हूँ ऐसे।
1: बिल्कुल, आप थोड़ी देर के, आप तो एक नियम बना दो कि 1 घंटे हमारे साथ तुम लोग को खेलना है ना? तो आप भी एक्टिव रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना? तो सुनीता जी, आज आपको कौन सा गाना सुनना पसंद करती हैं?
0: मुझे अलग गीत की भाषा दी दो, कभी बुलाया है माता ने बुलाया है।
1: जी सुनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। वरीना जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: अहमदाबाद
0: अहमदाबाद का मौसम कैसा है इस समय?
1: का मौसम तो अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है। मैं
0: अच्छा, और अपने बारे में और कुछ बताइए।
1: एजुकेशन
0: अच्छा जरूर जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आप बनवाती हैं?

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताएंगे।
1: मैं बबीता कुलनी, जिला सागर।
0: बबीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सागर के क्या हाल है?
1: बस मैम जी बढ़िया है। आप सुनाओ, आपके मुंबई के क्या हाल है मैम?
0: मुंबई बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बबीता जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: पढ़ाई करते हैं दीदी, और घर में रहते हैं तो माता पिता का हाथ बताते हैं। जैसे खेती किसानी होती है हम लोगों के यहाँ पे, तो
0: जी
1: दीदी अपने अभी हम लोगों के यहाँ पे वो करता है सोयाबीन और उड़दा लग जाते हैं यहाँ पे उड़द। कभी आओ तो दीदी वहाँ की मूंगफली है बहुत फेमस आयोजन की।
0: क्या बात है। फिर देखिए, जब कभी मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य होगा, तो जरूर आएंगे और जरूर खाएंगे वहाँ की मूंगफली। मूंगफली के साथ में जो नमक मिलता है उसका स्वाद भी अलग होता है ना?
1: हाँ दीदी, दीदी देसी मूंगफली की तो बात ही अलग है दीदी। हम लोगों को यहाँ पे वैसे तो दीदी बुंदेली भाषा जानती हो आप?
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए, बुंदेली में क्या कहना चाहती हैं आप?
1: बुंदेली में मतलब बोलती तो मूंगफली है जो हम लोगों को लगती है यहाँ पे, हार की तो लगती है दीदी।
0: जी,
1: यहाँ पे दीदी जो बेर होते हैं अभी तो मतलब नहीं फले हैं, यहाँ तो फलने वाले हैं
0: बेर जो उबाल के
1: बस।
0: खाते, छोटे वाले बेर होते हैं ना लाल लाल?
1: हाँ, वो उबाल के दीदी जब वो खाते हैं, जब वो पक जाते हैं उनको तुरंत खाते दीदी, इतना अच्छे लगते हैं वो बेर।
0: जी। और बबीता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप बुंदेली में कोई गीत गुनगुना सकती हैं?
1: जी दीदी, बुंदेली में एक छोटा सा गाना है दीदी बेटी के ऊपर से।
0: सुनाइए।
1: बिटिया को अरे बच्ची होने को बहू पाती हो, नानी मामी की खाने को आवे, बिटिया घर को मन चलावे, आबी की बिटिया बहू पाल की
0: ये बहुत प्यारा सा गाना है बिटिया के बारे में, कि बिटिया की क्या अहमियत होती है परिवार में।
1: पूरी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से, वेद भारती परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बबीता जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
1: दीदी सुहाग फिल्म का गाना सुनवा देना, दुनिया में भी सबसे बड़ा तेरा नाम है शेरवानी।
0: बबीता जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

टेलीफोन कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। मुंबई का एसटीडी

वार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। आप सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, कभी न कभी आपकी कॉल लग जाएगी। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उनसे निवेदन है कि 2 महीने तक कॉल नहीं लगाए। आज हेलो सहेली कार्यक्रम में सहयोग संपादन रहा झरना सोलंकी का और तकनीकी इंजीनियर समृद्धि नायक, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए अब मंजरी वर्मा को अनुमति। नमस्कार। सखियों की दिल की जुबान हेलो सहेली।

0: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के

0: से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुनहरी धड़कन विविध भारती पर।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, और क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया? विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: Absolutely vivid party. गीतों भरी कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।
1: अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है। गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करते हुए लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था। मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे। जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थी, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर जो उसके मेन गाइड है उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती।

से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कंपटीशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थी। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनवाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं। अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी जहाँ युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। अब सुनिए आगे।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था। वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही है, क्या फायदा हुआ जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्मों में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चाटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है, सब चाहते ही मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी, तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में, दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है, जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी, मैं उस दीवार से

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम मार्शल्स घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर इससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरा पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं माँ? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना, समझ गई बच्ची? अब बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थी, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जरूरत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी, हम

करें, हम तो मजबूर है ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, फिर कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ। पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आएंगे ना? बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मार्शल्स घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर! पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी, पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत की तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मार्शल्स घाट की गगनचुंबी ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार, गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थी, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह उड़ना चाहती थी।

ये वादियाँ ये फिजाएँ।

0: शहर की सुबह बुला रही हो तुम्हें, वो वादियाँ वो फिजाएँ बुला रही हो तुम्हें, वो वादियाँ वो फिजाएँ बुला रही हो तुम्हें।
1: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजन कर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो, ताकि बाद में PhD की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे, सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सरपीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले, उस लंबो से सट सट कर थाली दे देकर इतना खींचे क्यों नहीं पड़ रही थी तू है विनोद भैया? दिव्या को जलती आंखों से लिलोड़ते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिला कर रह गई।

घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। इस घर में ये वक्त लड़कियों के लिए बाहर से लौटने का नहीं है। छोटे भाई सोनू ने दरवाजा खोला और अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में वो मशगूल हो गया। चाचा हाथ में रिमोट लिए टीवी के चैनल बदल रहे थे। टीवी बंद करते हुए उन्होंने दिव्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराध करके लौटी हो। कॉरिडोर पार करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चौल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था। लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि दिव्या 3 भाई बहन मिलाकर 5 लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर 3 लोग। मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थी और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहां पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चले गए, घर से पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं। हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई।

तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेले इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मन व सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं? लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोचे लगी थी, मानसीस घाट में देखे फूल मुरझा गए थे, बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशीज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर

चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही। इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी। जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन की मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निसंग पाया। डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैला नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था। बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। राणा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीट हार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगी, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओह हाँ तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया, जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने।

तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसे चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार से पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख ले तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है, और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा पूछ तो सही, कौन है, पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है प्रणव सर। अनमनी से दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, रायमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, चल ना चल। नहीं मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा के स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत जरूरी है। अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है, आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है, क्यों क्यों घबरा रही हूँ मैं। आखिर आत्मा से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है, आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहां से आएंगे। पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं। अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहां से आएगी ये रकम। दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर

देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर आंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेले निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और रायमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा, और किसके साथ रहोगी हैं? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन रायमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ रायमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसे होगी? क्या होगा मेरा, कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई।

दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थी, जा रही थी। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराए शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो ऊहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रही। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करते हुए खुद ही हौसले से दब भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थी। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदे चिपक गई थी। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलहटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की फतिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज ए भक्त, एज ए नीम कोहली बाबा फॉलोअर, तुम्हें उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज ए फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे भई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध

देश की खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत लफ्जों में बयान नहीं की जाती, कभी खुशी कभी दर्द दिल में छुपी होती है। कायनात में ये दो दिलों का सफर होता है, कोई कहता है तो कोई सुनता है। मुलाकात की एक ऐसी ही हसीन शाम को हमने भी किया उनके नाम। तुरंग गुलों के निखर गए, नसीम बहार भी उनकी खुशबुओं से मुअत्तर हो चले। नज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की शमा जल गई, दर्द का चांद छुप गया, हिजर की रात।

तुम जहाँ प्यार से सपन।

जो मोहब्बत उनसे की है ख्याल उनका ही रहता है, हर रात तसव्वुर में दीदार उनका किया करते हैं हम। एक रोज वो हसीन शाम आ ही गई, खामोशियां अफसाने सुनाने लगी और दीदार हुस्न से इश्क का होता चला गया। ये नशा भी क्या है कहते हैं जिसे मोहब्बत, जब देखिए एक नींद सी।

चाहती हूँ दिल की धड़कनों पे एतवार आता नहीं, क्यों बेताबियों को करार आता नहीं। ये कौन खामोशियों में सदाएं दे रहा है, कोई रह रह के पुकारता हो जैसे। वक्त थम सा जाता है, सांसें रुक जाती हैं, धड़कनों में एक अजीब सी रवानी है। अब तो खुद से ये पूछते हैं कि कहीं

विविध भारती से आप सुन रहे हैं पेट्रो छाया गीत। राज दिल कभी कभी अफसानों में बयान नहीं होता, कायनात भी ऐसी पाक मोहब्बत का एहतराम करती है। यादें मोहब्बत की होती हैं बड़ी शादाब, गुलिस्तान की तरह अफसानों में भी दोहराई जाती हैं। दो दिल जब धड़कते हैं एक दूसरे को सदाएं देते हैं मोहब्बत का नाम लेकर। वो नींद की आगोश में होने नहीं देता रातों को तसव्वुर तेरा।

तू जो चाहे तू।

बेकरार वक्त है, संभाली न संभलता है, तो हमारे दिल को तड़पना है हर बहाने से। फिर एक बार देखा है हमने वो नाज़नी चेहरा, वो बेख्याली का आलम, दिल के जज्बातों को निगाहों से बयां करने का वो पाक अंदाज और अदाओं में वो शोखी। दो घड़ी ठहरो कि दीदार अभी बाकी है, हुस्न इश्क की ये मुलाकात अभी बाकी है।

बातों बातों में रात ढलने को है, कुछ देर ही हुए उनसे मुलाकात हुए, वक्त जरा और समझाए, निगाहों को यकीन तो आ जाए, हवाओं में ये एहसास घूमने तो दीजिए, नजरों से नजरों की मुलाकात होने तो दीजिए, कि हसरतों के तूफान दिल में अभी बाकी हैं, तो आज की रात यूं हो कि ठहर जाए, भीगे पहन की ये संदली खुशबू बिखर जाए, बूंदों की ये मोती बरस जाए, हसरतें दिल की सांसों में सिमट जाए।

संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

सुनाई है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन तराने नए पुराने इस कार्यक्रम के कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र,
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=5, ये फॉर्मूला क्यों बने। हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है, पहली देखेंगे सबसे पहला मोटा जो होता है जी इज ए +1। तो विचार भी अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, और होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती
0: है। एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु है डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से होगा, उठेंगे तो
0: इसलिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीले ध्रुपद से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने, लीजिए सुनिए सीमा आवाज।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बात और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलिनार के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में विक्टोरिया नंबर 203 का गाना। परमा मलिक है गीतकार और संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम गोरी बाबा फॉलोअर, दोनों उनके जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पो आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: श्रोताओं, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

0: साथामनि दग पुआव आचि खबरांखौ सिलं स्टेशननिखौ नायसिमां खोनासंनो मोनगोन दग चिबुङाव जन मिन्टु संमा आरो उनि दलनि इसलार मिथिलानि गीतरांखौ गामा थांगोन दग खलाचियाव छादामब्रानि प्रग्रामाव गार' फिचार फिल्म रेपचारो इन्टारनेशनेल एवार्ड मानगापा डमिनिक मेगाम संमाखौ इन्टारभिउ रानिखौ खोनांना मोनगोन स्नि बाजियाव हिन्दी फिल्मनि गीतरांखौ गामा थांगोन स्नि खलाचियाव दिल्लीनि विविध भारती प्रग्राम छेट बाजि आथामाव दिल्लीनि हिन्दी खबरां छेट पुङाव दिल्लीनि इंलिश खबरां छेट खुङाव वेस्टार्न मिउजिक प्रग्राम छेट कलाचियाव दिल्लीनि स्पोर्ट्स स्केन छेट सुप्रि बुङाव दिल्लीनि हिन्दी खबरां स्कुबाजियाव इंलिश खबरां स्कु चिबुङाव दिल्लीनि स्पटलाइट प्रग्राम चिकुंबाजियाव दिल्लीनि हिन्दी खबरां चिकुंबुङाव दिल्लीनि इंलिश खबरां आरो बनखामे चिकुं चिकुंनि चिकुं कलाचियाना विविध भारती प्रग्राम रांखौ नायसिमां दिल्ली स्टेशननिखौ खोनासंथाना मोनगोन यारांता थामना नक्सगमन प्रग्राम रां उङिङा मंगसागेतानि सेक्रेटारी टु द एग्जिक्युटिभ कमिटि गार' हिल्स अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल थुरानि नकि उयेटिङा लेन रिकॉर्ड मेनेजमेंट सिस्टम फोर्टार को ऑफिशियली चिसा सेप्टेम्बर हजागनी को ग्रुप तो कोनी आवा चिंगाता हा एप्लीकेंट रंग आ पाथानी बिदिंगो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर सिस्टम को ऑफिशियल लिंक gsadc.nic.in रजिस्टर खाए एप्लीकेशन रंग को ऑनलाइन सबमिट करनाता मानगनो या फोर्टालो गताल पाथारंग को थारिना रिन्यू खाना रिसेटल खाना पतारांको गताल बिमंगोना ट्रांसफर खाना लैंड इवैल्यूएशन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट आरो जमाबंदी कॉपीरांको बा थाइना गता मानगेन या फोटर को जखालानियो नेनकारी को मानेंगो दे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट थुरानी हेल्प डेस्क सोना सिंगसंदिना मानगेन या युएतानिको सेक्रेटरी टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी गार' हिल्स ऑटोनोमस Autonomous District Council Turani Wiataha. Dawa Duk Sain Jamano, Dok Baze Minit Pongong Ahan, Aachik Khobarangko Naishimang Silong Stesnoniko Kenang Namat Gen. Yan Akaspani Tura.
1: Let's listen to some stories of insurance.
2: That day, Mr. Handa returned home from his office with Mr. Dugal to find the door wide open. Everything was in disarray. TV, fridge, jewelry, all gone. A lifetime of savings wiped out in one night. Placing a hand on Mr. Dugal's shoulder, Mr. Handa said, "You gave the right advice, Dugalji. Achha kiya. Home insurance liya. The losses from the theft, now insurance will cover it."
1: In tough times, everyone says the same thing. Achha kiya. Insurance liya. Visit achhakiyainsurancelia.com, an insurance awareness initiative by the General Insurance Council of India.
3: Achha kiya. Insurance liya.
4: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
5: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
6: बस यही पूछो, व्हाई? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक व्हाई आपको फ्रॉड से बचाए।
4: हमेशा पूछो WHY, व्हाई कहता है कैप्टन व्हाई ऑफ SBI,
6: आपका साइबर रक्षक। पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
7: और हमेशा हमारी फिक्र करना, वैसे उनकी जमा पूंजी बैंक में भी है
6: और क्लेम करना मुश्किल होगा।
7: अब भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जा, क्लेम फॉर्म करो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने, और भी आसान।
6: आरबीआई करता है,
7: जानकारी
8: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सैनिक एक्सपीरियंस करके खाओ ना सैनिक एक्सपीरियंस करके मतलब मंदे इमोशंस यूनिवर्सल हो उन्हें के मन मंदिर अंबा को कनेक्ट करना मने आ फलचीनी मंदिर अंबा
1: फिल्म रंगारा दंथांग दंथांग रोकोम नी फिल्म रंग रंगामो मतलब हमारा कमर्शियल ये नकापा दंथांग दंथांग जॉनर फिल्म रंग रंगामो निमंग ना नी थारी पर फिल्म रंगारा माय नकापा जॉनर नी फिल्म ने नारा आगान गेंचम यक नाथम स्विंग परंग बहाइदा अंगतान इनस पाइंगेन यंगा बेबिरा ओए
0: नमा ना नी क्वेश्चंस ताओ फिल्म रंग संस्पे अंचंग निजरंग पर फिल्म रंग दे फिल्म सिनेमा हॉल होने के बाद फिल्म रंग बा टीवी रंगो चैनल रंगो उनके बाद फिल्म रंग दे बंग पता चाहन पॉपुलर फिल्म्स बा कमर्शियल फिल्म्स ने मंग आगना वालों को दे मेनस्ट्रीम सिनेमा रंग बा आगना वालों को दे इन द के मंग ताऊ कता अंगनी थारी के पास फिल्म रंग को दे इंडिपेंडेंट आर्ट हाउस फिल्म इंडी फिल्म ने रंग आगन बता और यान अंगा उको अंगनी फिल्म को थंखा मन्ना रखे बॉक्स ऑफिस ने थंगा मन्ना रखे थारी जा के बाद चिंको इनके थारी ना फिल्म इंस्टीट्यूट रंग सिखिया इंदे रंग बनी आदि अंगी चॉइस हुआ मैंने अंगा ताऊ हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म रंगों निया उदे बंगबत गोल्फो रंगन बंगबत उनो सेल उनन प्लॉट उनन रंगन बंगे थोले आगन निको मेसुका इंटरटेनमेंट नसे मेसुका इंते मंबा आप दे मंदे को नियम संक्षेपना बा मंदे को नियम मैं बा रिलेटेबल नियम हीरो दे नॉट नेसेसरली हीरो अंशिंग हीरो हीरोइन में आगने का उन्हें के मंग जे रंगन सक्सा हीरो मन्ने सक्षे बंगो सक्सा दुख ना मनगा बकोसे हीरो ने बस को दिन ना गाड़ी रंगो बल्ला ना मनगा बस स्लाइड चले ना चंगा परंगो से हीरो ने मंगा चिंदे आगने अंते हम बने दाव हीरो ने ना ऑन बंगबत्ता मंदे रंगन हीरो हीरोइन ने ना ऑन सिलगप्पा मिचिक गेट ने मंग सारी ये बादल ने मंग सुकना चंगा परंगो से हीरोइन ने मंग आगने अंते हम बने चंगो फिल्म रंग दे रियल लाइफ वो तंथंग नंग हीरोस रंग दूंगा बस को बदे अंचनी जंगी थंगानियो मामा थंगपा बा मागपा पागपान बिसोंनी जंगी थंगो माय तकि बिसारंगना तंथंग थंग स्ट्रगल संगो दक्कानियन बस को दे बाबा हीरो आया वरंगनी के मन दके याको ऑब्जर्वेशन का एमंग लाइफ वो माय तकि अंचंगा को वा हीरो हीरोइंस दे नॉट नेसेसरली स्टार सॉन्ग नंग जो इंडिया हम बने नोक्ट्रामन बने इस उम्मीद नोक्सलन ये हीरो फिगर रंग दोगा इंडिया हम बात करते हैं चला अग्रे हिंदी कमर्शियल फिल्म रंग को नियम या सॉन्ग सॉन्गसलो नोक्ट्रामो महारियो बर्पेस करो हीरो दोगा होता है चल नीना गोला सो उन्हें मन ये फिल्म रंग दक्के दक्के नीना रंग
1: सकिया
0: उन्हें मैं यहाँ को दे नंको मैना जिन सोलो ना कमर्शियल फिल्म निसम सिमा ओदे वन आ रंथों हा रंथों हा ने मन आ रियल लाइफ वो जंगी थंग ओ नचरंग पा होदे ना नीना छंगजा जो नंगनी सेफंग वन माइबा नमग प गुन रंग नमग प असेल रंग नमग प खम रंग मंदिर रंग ने चक्ची दक्का को किंग न बदवान ते मने बासको दे वा फिल्म वो ब्लॉक का बस अच्छी बहुत को तक के मंग ब्लॉक का बोसे ब्लॉक का निम्न आगने वो चौकट के बोसे देखे हाई एक्सपेक्टेशन ऑन इन कमीशन ने फिल्म में इफेक्ट रंग बाद दुआ रोते थे जब मैं यह आर्ट हाउस रहा ग्राउंडेड एम रूटेड एम रियल लाइफ माय माय अच्छी नमगप्पा बनमगीजा बेवाल रंग दुआ को एक्सप्लोर का आर्ट हाउस फिल्म से हुए
1: तो कि मंग मंगसा को ना उस नस कोई ना ये बांग ने किस को द सीन नस के रूम या अच्छा अच्छा सुनो दे एक्टर एक्ट्रेस ने चन्ना को मंग के बरांग दुंगा जा खल ना दे चांगी ना बा दुंगा मो टैलेंट रंग दे दुंगा लिविया अंडे बे एक्टर एक्ट्रेस मंचरंग दे दुंगा जा नारा मायर के नमने फिल्म रंग को खलना रा मायर कपा मंदिर रंग को संधिया हा मायर कपा रंग को नारा संधिना नंग नक कहा अरु बानों ने को मायर के संधिया हा वरंग को बाद अच्छी कनाब सोग बरंग ना थलात पाव दे मिठल देगन
0: अंगे रच्चे फिल्म ना दंतांग दंग इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स रंग दोंगा प्लोंगन यादे दाओ अंचिंग दे रामनाम फिल्म रंग को निया उन्दे सुपर मेन एक्टर रा सुपर मेन एक्ट्रेस रहा नमस्क न मने उन्होंने सब दिया गया शाहरुख खान बा सलमान खान बा ऐश्वर्या राय बा दंगथंग दंगे बक बक तक आया नमने इन्दिर बा अंगी फिल्म रैप्चर्ड बलून ने दंगथंग दंगे कब कैरेक्टर्स रंग बा यू नो स्टडी का उन्हें के मन स्कंग पदे चिंगोडे एक्टर एक्ट्रेस रंग ट्रेन एक्टर एक्ट्रेस रंग लुंजने के मन आवादे मेरा चुकना अंगी सक्सा मेन कैरेक्टर जियान बलसी चीसा निबीसा ओंगा गोल्फो निकता इन्दिर के मन बियारा मक्तू नंगा गोल्फो इन्दिर के मन दाओ दे अंगारा अंगे व बीसा को संदीना नगानी रा बिनी क्लिफ क्लिफ निम्न आगना जे रंगन कुछ रंग नमे कच्चा कुछ ने आगना आज की दे ndak ba ko ga sandina na ngaro ndak ni ndak sandina na ngiwana ha tum thang thang hospital rang si di anga doctor sang ho gronga maina ya bisona special operation on ga parang dunga wa wa mandirang ni less rang ko sandi ya sandi me nga wa ti sang ja mon for school lang si ri ang me special bisarang ko sandi ya ndak me tan thang thang thang school lang si anga ri ang sandi sak hazal ma batle bisarang ko sandi ya school lang si di ya ma maina nga wa particular nang thek pa ma khaw na nga
1: when you man
0: imagination ko ko la bana ta ya de ani bi sarang ko pak ra mung bak la che ko sa hazal ni hazal ni sa photo kha esa dawang ni pre production ho amu sari pa pa tak chak pa excel mara bin production ka mata chnga tang tang school lang chi songre tang tang tang bi sarang ko amara ngan ko bane clap clap tang ko ko de ani ku chit tang ko ra ho de men nang sa ani ki ila ki ta king chnga sakse bi sako ampati ni ko man jok chan nak yang beko acting kana train nang kapal ha balsi sana covid 19 ni sumai rang chunga 2021 sa shoot kana bachanga chokna ma una wa bisara balsi sana ni shoot kana ma jani man arap la kon kacho jaman ni iso ni pathe ni kata kacho angna de bi wa bisa ko anga phangnan thura ni nambo chokna biko hospital sir mang rong ra bi ni ya me bani sel ta odi ni sakse doctor ang sanga na re nang ya me ba actor ko ma na ma ni ra yan chim deng ba bya ka jin chokna ni ma ga na ra jaman de biang lagi selesna ndak ke mang adi ang emang wa biso grongya grongya mang phone ka tang bina ka mak kula na ni bojong film khala de ram ram khatam ja na bol ka duna nang gen chi jona changna nang gen khatna nang gen ga ka dakna nang gen gamak khona nang jok bia isa na khal gen ne nura awa try ka gen emang ka na wa biso ndak ke wa biso ko ha film shoot nas kang anti sang nas kang sama na ndu ko train ka jok ni ban ta alo nam gappa actor ma bia ndak pe namma da alo bia actor that nagale ne sakse film dhari ga pa angni trailer ko nikke mang ya ko cast kana ko antang film feature film cast kana ne mang drama ko ma nam mai ga pasa jok pe ba da de ar bombay ro ko biko tam mak ka sunchin ni bini acting ko belong nam nak chok ndak ke aru ang baksana tan thang thang mandir ang ko uni ma ga ba phaga ba tak parang ba ma ma thang tak parang ba gunda tak parang ko ma lung sanje na nang jok ndiam bani आजकलंग ने ब्लूम टैलेंटेड ना बेशो आजकलंग वो खानास के बको मन्ना हम उधे वन मतलब ने आप वो खानास का ने मान्दे वो खानास मन चाह के बको मन्ना हम उधे बेशुं के नंगी तक ना अगर नंगों तक ना मन के बको उधे बेशुं ना मिन एक्टिंग परफॉर्मेंस करना मत ना मैंने को दे रियल लाइफ परफॉर्मेंस तक के कातर होगा रियल लोगे कातर ना इसमें दो नियम उधे या बंदे रंग स्कम बचांग ना एक्टिंग का आने बना आगे ना मन जो ब्लूम प्रोफेशनल long professional ro agun sakam ko appreciate ka man gam andrang ni gam na niyam ode yakna swing parang niyam ode ya ya actor ang long en nam ko parang ma ro ansong blown talented man derang acting kan sang parang dong ansong ba star ung jomong ba de ba khasni khasni enda ko ba chhon nam ko ta ang blown ko shwa bia wa nagle ni success film maker jan london no pore ba ko pasa bia ba wa biko thor ko na ya actor ko audition na ni musung ating ro ni gam haida yarang chin bisona chumang na ba dunga chama
1: ba
0: we mena apal chini ha ni gaman matamang de ta o actor no audition karos de upar ma na
1: na di internationally acclaimed film director njok mo na khan film festival ang na ba ang ha lokar no
0: we
1: film festival ang na ba ang ha mo wala mo ba na de chi ba ba ang na ni film de ago sa kamup chin ksing ha wamang ni reaction rang ara mai rakyo aru na wamang ni reaction rang kon ke na ni kha thong ram ai tak ba feeling strong mai rak ba chan chen ni rang suk ba ha ba ba na chi sa na ni mai ba ko ba aga na to de nam
0: ni ang tung thang tung thang yan da sia na ke so pon dam so ponga film festival strong na song re jok ang film asia o europe o uchi america o australia rang na tung thang continent rang na so kong jok thum nda ke mang bangbatta changon angni film ko neon bang nam nam ba review sang ko ngam na ha aro bisong bang aran inda kyang na gana film ko nak kem mung sung de bisong bebe raja ya yanu ka leng pa actor ang non actor ang bebe rana manja main and dak plan na mani ngon bisong acting ni na mani ngam bebe rana manja aro mung sung ha sa angos na ko ma yero indi ni film ni mung sung na ko bisong minste jin chalo anga angni film ko apal chi rangi nga on a garo mam ko represent kha cha chanspe asian film awards hong kong a jin chalo nominate kha ko man ha on indian film ko represent kha malaysia a man jo award man on indian film ko represent kha cha uni man india ko sa karo de karo by default mo. India ma jinsa

0: सकांती जेरान फिल्म थारी नस्का जेरान गोल्फा नस्का बफ्तम ने पको खाना नस्का वा मंदिर आउं था दंगने जुमान कने रंको बियाप तुम जा खाना चंगादे मन जा गारेल्स ने बीसा सा ने मंग संचिना नंग जा अंदर मो भागना अंदर दंगने को जुमान को अंदर दंगने इंटरेस्ट को थंगे रखी ना आरो या ना थंगे रखी हो मदे या सोमे नंग का परंग दी बाइगन उन्हें कि मैं या कुछ ना बीसा रंगना बनास का परंग लोगा हेल्प रूम में मदे आवाज की उतना पंगन मैं भाई अंदर हम बने स्क्रीन पर दे जीरो मन खाना स्किंगा तकना स्किंगा बीसो अंथंग थंग में मन ना तो पेट मन ना लेबल लो रख के काम करना नंगें इजी वे आउट को अपना नंग जो है पंगबादा चावन चंगा दे अंगे सोमाय दे इंटरनेट तुंजा मामंग तुंजा दारंग बा गाइडेंस तुंजा अमारे अंथंग मन रामा बुरिन दक्का को रोंग दुंगा को बासी मंग मई दक्के वाची रिए मंग अंथंग ने नेविगेट खाय मंग जानो ने सुकंग जक उन्हें मन दालो इंटरनेट बदुमा ना सर्च करना ना वाले दंतांग दंतांग इंटरनेट रंगो गूगल रंगो यूट्यूब रंगो सर्च करना मना उन बक्सा ना नंगे जंगी थंग ओ माय तक बगोल पुरंग को ना आगना मेंगा माय तक नंगे ना जंगी थंग ना पन नंगे जंगी थंग मुझने लिव इन एक्सपीरियंस तुम ना नंगे जी तक उधे नंगे गिस्क्रा अनि रंग मेमोरीज रंग ना नोक चुन का पनो को देख चने दो ना वा नंगे नक प्ले गोल पुरंग ना नंगे दाउ फोन कल सिम सिम फोन नो ये दुमा यो वदे मम सोय मन लिव इन एक्सपीरियंस उम जा बिसरंग दे उनी के मन बिसरंग अगर फोन को करने में go out experience life changi ta ko na me experience ka bo goal for rank na bo dentang dentang ta ko experience ko man bo je ta ko de jin salon afam than na radio on goal for sina abaching on script sina abaching on na me experience tan na ko tan ka pa goal for rank sia na man gen na me gi scan ya na me memory tan na ko na ka pa goal for rank sia na man gen
1: tell be ju na thangan storyteller art film ni director wan na me gi sik ni chmung man गोलफोरंग कोना बीमंग प्लाते मे सुका मु अरुंदक बगा दाउना सुकाते चिपचाप खु मंगसंग मंगा मतानिना चंगना को मथेला अरुना ना नमास कानी खोना मखांग छिबा नकना इसोल जिहोबा नकनी प्लक तकानी रंग नकनी जा खुदियानी रंग प्लक खम रंग नकना सुक कानी को ओ नंग खुचिना नकनी गम छप बेग बे सोमय को छुना सखल हानिना आरो छुनि प्रोग्राम नारि बायनानि नों थुबे यपगम छत बेगपा

स्टैंडर्ड चैनल, विविध भारती और कार्यक्रम चल रहे हैं जयमाला। फौजी साथियों, लीजिए आप सुनिए बॉपी लहरी और श्रेया घोषाल की आवाजों में द डर्टी पिक्चर का गाना। रजत अरोड़ा है गीतकार और संगीतकार है विशाल शेखर।

Thank you.

अगली पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाज है विशाल बदलानी हंसिक अय्यर की और इसमें तमिल रैप का अंश गाया है कस्तूरी रंगन ने। विशाल शेखर का संगीत और गीत लिखा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता। पहली गजल पेश है खबीत है, जगजीत सिंह की आवाज में, टुगेदर एल्बम से। अजीज कासी है इसके गजलकार और मौसिकार हैं जगजीत सिंह।

अभी आपने सुनी गजल पंकज उधास की आवाज में तरंग एल्बम से, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चंदन दास की आवाज में। इसे मिली है एल्बम सितम से, और ये कलाम है बशीर बद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपद, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वनवेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। 3 राज्यों के 5 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी और तमिलनाडु वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलनाडु वेत्री कड़गम टीवीके ने दारापुरम और मंदुरांतकम में जीत दर्ज की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने 1.5 लाख मतों की निर्णायक बढ़त बना ली है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही है, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार

नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मुकाबला जारी। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु, कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप का आयोजन मिस्र के काहिरा में, पदक स्पर्धाएं कल से खेली जाएंगी। शंघाई मास्टर्स में जोरेव तीसरे दौर में पहुंचे, साकामोतो ने दूसरे राउंड में रुबलेव को हराया। और सीनियर पुरुष नेशनल हॉकी चैंपियनशिप कल से झांसी में शुरू।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से और सीधे लिए चलते हैं आपको झारखंड के रांची, जहां जेएसएससी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा क्रिकेट मुकाबला जारी है। रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16 ओवर 4 गेंद पर 4 विकेट आउट हो गए हैं भारत के और भारत ने 187 रन बना लिए। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे और इस मुकाबले की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद पर 20 रन बनाए हैं। वहीं संजू सैमसन, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे वर्ल्ड कप में, उन्होंने 41 गेंद पर 82 रन बनाए, जिनमें 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा था। और लोकल बॉय ईशान किशन की बात की जाए तो उन्होंने 22 गेंद का सामना किया और 43 रन बनाए, जिनमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। शिवम दुबे ने, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था फाइनल में एशियन गेम्स में, उन्होंने 10 गेंद में 7 रन बनाए। और इस समय श्रेयस अय्यर, कप्तान श्रेयस अय्यर 8 गेंद पर 16 रन बनाकर और तिलक वर्मा 8 गेंद पर 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए वेस्टइंडीज की, तो अकील हुसैन ने 3 ओवर में 46 रन दिया। वहीं रोमारियो सेफर्ड का अंतिम ओवर जारी है, उन्होंने 3.4 गेंद पर 47 रन दिए। उधर रोस्टन चेस ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में महज 6 की इकोनॉमी रेट से 3 विकेट लिए और 24 रन ही दिए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी एकता थानी। एकता, अभिषेक शर्मा के लिए बेहद अहम माना जा रहा था ये मुकाबला, आज कौन से रिकॉर्ड अपने नाम करते करते रह गए अभिषेक?
1: प्रशांत, भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास आज T20 क्रिकेट में 2000 क्लब में शामिल होने का सुनहरा मौका था,
0: जी
1: लेकिन वह क्लब की दहलीज से वापस लौट आए। अभिषेक ने अब तक 62 पारियों में 195.28 की स्ट्राइक रेट से 1947 रन बना लिए थे और रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और KL राहुल की कतार में शामिल होने के लिए उन्हें 53 और रन की जरूरत थी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अभिषेक शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ रांची में खेले जा रहे श्रृंखला के दूसरे मैच में 20 रन बनाकर आउट हो गए।
0: दिग्गज खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उनका, 12 गेंद पर आज 20 रन ही बना सके, लेकिन टॉप 5 में, टॉप 2 में हमेशा ही रैंकिंग में अभिषेक शर्मा रहते हैं। हालांकि आज वो रिकॉर्ड को ध्वस्त करने में रह गए, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले मुकाबलों में वही कई कीर्तिमान अपने नाम करेंगे। और अगर श्रृंखला की बात की जाए तो भारत ने पहला मुकाबला डोमिनेट करके जीता था, आगे की क्या तस्वीर है एकता, और दोनों टीमों का रिकॉर्ड इस प्रारूप में क्या है?
1: देखिए प्रशांत, तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 श्रृंखला का रांची में खेला जा रहा जो मुकाबला है ना, ये श्रृंखला के निर्धारण में अहम भूमिका निभाएगा।
0: जी
1: भारत पहले मैच में जीत दर्ज करके श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले चुका है और अब वेस्टइंडीज के सामने श्रृंखला बचाने

0: की चुनौती है। लेकिन मुश्किल यह है कि इसके लिए उसे भारत को लगातार दो मैचों में हराना होगा
1: जी।
0: और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि पिछले 4 वर्ष से ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी टीम ने भारत को भारत में लगातार 2 T20 मैचों में मात दी हो। जून 2022 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब भारत को दक्षिण अफ्रीका ने लगातार 2 मैचों में मात दी थी। उसके बाद के 4 वर्षों में अपनी सरजमी पर भारत का रिकॉर्ड 42 जीत और 9 हार का है। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि भारत ने 7 साल से भी अधिक समय से कोई घरेलू T20 श्रृंखला नहीं गंवाई है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत में आपको याद होगा कि भारत आयरलैंड और इंग्लैंड के हाथों T20 श्रृंखलाओं में बुरी तरह हार गया था और मुझे तो लगता है कि देश के क्रिकेट प्रेमी इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद भारतीय टीम लगातार 10 मैच जीत चुकी है। दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों की बात करें तो अब तक भारत और वेस्टइंडीज की टीमें 32 बार टकराई हैं। इनमें 21 मैच भारत ने जीते हैं जबकि 10 मैचों में वेस्टइंडीज विजयी रहा है। एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ। इस श्रृंखला के अगले मैचों पर नजर डालें तो 11 अक्टूबर को इंदौर में तीसरा मैच होगा, चौथा मैच हैदराबाद में 14 अक्टूबर को खेला जाएगा और आखिरी मैच 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा।
1: जी, ओवरऑल 21 का रिकॉर्ड है भारत का और ऐसा लग रहा है कि आज 22 हो जाएगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी सशक्त तरीके से 12 गेंद पर 30 रन बनाकर खेल रहा है और ईशान किशन ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो एशियन गेम्स हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आज अपने घरेलू जगह पर भी उन्होंने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया, ताबड़तोड़ 43 रन की पारी खेली। लोकल बॉय ईशान किशन ने मुकाबले से पहले क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
2: Crowd is there, crowd is going to be like, you know, when you come here, I've played so much cricket for Jharkhand now, and when you come here, in fact, you get that support or you don't get that support, but you know there's a lot of members who are going to watch you, and you will have expectations just out of love, not that ki something else will be there, but out of love, they'll just want you to perform, so I know there's a bit of added pressure, but that is the fun part, when you have that pressure, when you know so many family members are sitting there watching your game, you have that pressure, and when you perform there, you get stronger, you get better in life.
1: उधर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच डर्बन में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। मैट रेनशॉ 46 और कप्तान पैट कमिंस 33 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसन, मुल्डर और नोकिया ने 2-2 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 18 अक्टूबर को और तीसरा 27 अक्टूबर को केपटाउन में खेला जाएगा। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज अलग अलग वर्गों के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रिचचेनॉक इंतनान से होगा। वहीं पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय का मुकाबला डेनमार्क के क्रिश्चियन फॉस्ट केजियर और रेशमस केजियर से होगा। और श्रोताओं आपको बता दें कि भारतीय जोड़ी ने पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के ओलिवर बटलर और सैमुअल जोन्स को हराया था। एक तक कैसा रहा है अब तक अनुभवी पीवी सिंधु का सफर और क्या कुछ उनसे उम्मीदें होंगी?
0: प्रशांत, आप तो जानते ही हैं कि भारत में पीवी सिंधु को महिला बैडमिंटन का पर्याय माना जाता है। वह लगातार 2 ओलंपिक खेलों में देश के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। वह वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड टूर प्रतियोगिता में भी पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा चुकी हैं। वह देश की पहली और एकमात्र विश्व चैंपियन महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अप्रैल 2017 में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रही थी। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न जैसे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आर्कटिक ओपन सुपर 500 की बात करें तो सिंधु ने जापान की रिको गुंजी को मात्र 49 मिनट में 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है।
1: जी, युवा भारतीय जोड़ी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, पिछला मुकाबला जीतकर अपनी लय बरकरार रखी। इस प्रतियोगिता से क्या उम्मीदें होंगी?
0: देखिए प्रशांत, जब भी कोई खिलाड़ी जीतता है तो उनसे और जीत की उम्मीद की जाती है। भारत के कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय ने पुरुष डबल्स मुकाबले के पहले दौर में 5वीं वरीयता प्राप्त चीन के जिन टिंग और रेन शियांग यू को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। श्रोता,

0: कृष्ण और पृथ्वी की जोड़ी ने मई में एक के बाद एक सेंट डेनिश रीयूनियन और छठी मैक्सिकन अंतर्राष्ट्रीय चैनल प्रतियोगिता जीती थी।
1: बहुत बहुत जानकारी के लिए धन्यवाद एकता। और अब बात निशानेबाजी पर। ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है। पदक स्पर्धाएं कल से खेली जाएंगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
0: निशानेबाजी की दुनिया में एक बार फिर रोमांच और प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार है। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 16 अक्टूबर तक काहिरा में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 51 देशों के लगभग 385 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय टीम में कुल 35 निशानेबाज शामिल है। इनमें पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह के साथ एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पलक गुलिया जैसे प्रमुख नाम शामिल है। भारत के युवा निशानेबाज जोनाथन गेविन एंथनी पर भी निगाहें रहेंगे, जो जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रतियोगिता में राइफल और पिस्टल के व्यक्तिगत तथा मिक्स्ड टीम स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता अपनी लय और प्रदर्शन को परखने के साथ साथ साल के अंत में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल के लिए जगह बनाने का भी अहम अवसर है। 10 अक्टूबर को 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल की मिश्रित टीम स्पर्धाओं के साथ पदक मुकाबलों की शुरुआत होगी। मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल में पलक गुलिया, मुस्कान उदयवीर सिद्धू और अजेंद्र सिंह चौहान भारतीय चुनौती पेश करेंगे। वहीं एयर राइफल मिक्स्ड टीम में आर्या बोर से ख्याति चौधरी, श्रीकांत धनुष और पार्थ मुखीजा हिस्सा लेंगे। काहिरा विश्व कप में भारतीय दल के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने और पदक तालिका में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की चुनौती होगी। अब देखना होगा कि भारतीय निशानेबाज अपने सटीक निशाने और शानदार प्रदर्शन से देश के लिए कितने पदक जीत पाते हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स गैन।
1: और अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
0: देश भर की हॉकी टीमों के बीच कल से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूहों में बांटा जाएगा। ये चैंपियनशिप देश भर की टीमों को अपना टैलेंट दिखाने और नेशनल लेवल पर सम्मान के लिए मुकाबला करने का एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म देगी। डिवीजन ए में 12 टीमें होंगी, जिन्हें 3-3 टीमों के 4 पूल में बांटा गया है। पूल ए में हॉकी पंजाब, हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु और हॉकी बंगाल शामिल है, जबकि पूल बी में हॉकी मध्य प्रदेश, हॉकी महाराष्ट्र और हॉकी पुदुचेरी शामिल है। पूल सी में उत्तर प्रदेश हॉकी, हॉकी कर्नाटका और हॉकी चंडीगढ़ शामिल है, जबकि पूल डी में मणिपुर हॉकी, हॉकी हरियाणा और दिल्ली हॉकी शामिल है। पूल चरण के बाद 18 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल होंगे, जिसमें हर पूल से टॉप 2 टीमें नॉकआउट स्टेज में जाएंगी। सेमीफाइनल 19 अक्टूबर को होंगे, उसके बाद तीसरे स्थान के लिए मैच और फाइनल 21 अक्टूबर को होगा। 3 डिवीजनों में टीमों के बीच मुकाबला होने के साथ 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पोस्ट नेशनल चैंपियनशिप झांसी में घरेलू हॉकी के रोमांचक 2 सप्ताह का वादा करती है, क्योंकि इसमें हिस्सा लेने वाली टीमें अपनी पहचान बनाने और अपने अपने टाइटल के लिए चुनौती पेश करने का लक्ष्य रखेंगी। पिछले संस्करण में हॉकी पंजाब ने डिवीजन ए के फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर प्रतिष्ठित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पोस्ट नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता था। उत्तर प्रदेश हॉकी ने तीसरे स्थान के मैच में मणिपुर हॉकी को 5-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। शंघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में जर्मनी के स्टार खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वरेव ने आज दूसरे दौर में चीन के स्थानीय खिलाड़ी वो यिबिंग को 6-4, 7-6 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं जापानी क्वालिफायर रेस साकामोतो ने दूसरे राउंड में पूर्व फाइनलिस्ट एंड्रे रुबलेव को 6-4, 6-4 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। और श्रोताओं, आपको एक बार फिर रांची लिए चलते हैं, जहां पर भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला जारी है। भारत ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 224 रन बना लिए हैं। श्रेयस अय्यर कप्तान 16 गेंद पर 38 रन और तिलक वर्मा 14 गेंद पर 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन

0: ईमेल sportscan.ar@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलनाडु वेत्री कड़गन ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नविपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलनाडु वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलनाडु वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रही है अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुए हैं। जो हमारे लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपद, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुलिया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपद क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: 서비스를 구색지지 도우치들이 설피야
1: समाचार संधि में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाण पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमरीका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमरीकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित है और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल है। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
4: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
5: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
6: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से से जुड़ना भी है।
7: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन
4: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
8: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढलना पड़ता है।

0: कि जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्ले को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्ले संयुक्त राष्ट्र के पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानव अधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन की नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलनगर वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाण कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्ले को शांति

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: निर्देशन साहब का नाटक दौर आया था, तुमने क्यों नहीं इसको हम पेश करे।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतर है दौरा दौरा दौरा दौरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दौरा तारा दौरा तारा, लेकिन मेहंदी से सब खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक के रहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों में रंग है भारतीयता का। वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हम उसका भरपूर आनंद ले पाते हैं।

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुई। उस दौर की ये मशहूर फिल्में हैं चोर मचाए शोर।

रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसीलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ऊंचापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में, सस्ती तुकबंदियों में कढ़ाते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे भावपूर्ण अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।

रविंद्र जैन ने एक और जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार की आज सुख हले।

संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और रामायण।

कुछ प्रसिद्ध बैलकृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्यमालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।

टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन। रविंद्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविंद्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविंद्र जैन सदैव

0: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन पर केंद्रित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज की फनकार।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबा फॉलोअर, दोनों उनके जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिल गवित्री कजगम टीवीके ने भी दारापुरम और मदुरांतकम में

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रही है अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीएसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसीडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारे लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारत ने कहा कि स्थायी श्रम प्रमाण परम कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवि पिल्ले को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्ले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 129 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal Nandigram in East Mednipur district and Rajinagar and Murshidabad district where by-elections were held. In Nandigram, BJP candidate Hasirani Rath defeated the nearest rival, Congress candidate Milan Pradhan, by a margin of over 1,22,000 votes. In Rajinagar, BJP candidate Sakharav Sarkar wrested the seat from the Aam Janata Union Party, or AJUP, securing 1,29,914 votes. He defeated his nearest rival, Ghulam Nabi Azad, son of AJUP chief Humayun Kabir, by a margin of over 75,000 votes. With victories in both these constituencies,

सुन रहे हैं छाया गीत। भेज तो दिया दिल का पैगाम उन्हें, न जाने क्या लिखा इस दिली नादान ने। अब घबराते हैं अरमान, डरते हैं खुदा जान उन्हें। प्रेम में नाराजगी न मिले कहीं अंजाम हमें, ये प्रेम की पाती लिखना कहाँ आसान रहा। जब तक न मिले जवाब उनका, दिल रहे परेशान मेरा।

आया है खत तो देंगे जवाब भी हम, कैसे कह दें किसी अनजान से अपने दिल की ये बात हम। कहने तो थी उनसे लाखों बातें दिल की, मगर किसी और से कहते वो बातें झुकते हैं शर्म से नजर। लिखा था मेरे सांवरिया ने, जानते हैं वो मेरे दिल की हर बात, लिखा सलाम छुपाए हैं उसमें ही दिल के सारे जज्बात।

लिखता दुआ था सलाम खत में छुपा कर दिल के जज्बात, वो क्या समझेंगे मेरे विरह की ये रात, क्या जान जाएंगे मेरी उलझी लटों की उलझने, मिलेंगी आंखों की कोर में छुपी उनके इंतजार की वो रात, न जाने कब आएंगे साजन इस गली, उनके बिना न दिन भले लगे न लगी भली रात।